0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

सुनने वालों की सेवा में मेरी तरफ से हरेक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आज भीफे बृहस्पतिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, तहदिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03265 65 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03262 66 11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आसरो मीठे आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। चले मिलकर अगला भजन को सुनते हैं आज की भजन यात्रा प्रोग्राम में।

सेवा में रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए जो अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये खास सुंदर भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।
1: प्रभु प्रेमी भक्तजनों, भगवान कण कण में व्याप्त हैं लेकिन नजर नहीं आते, लेकिन वह हर पल हमारे पास रहता है। खुद भगवान ने कहा है कि भक्त संग थारो नहीं, भक्त संग छारो नहीं, सदा रहूं तिन पास, जहां न आदर भक्त का वहां न मेरो बास। मैं सदा अपने भक्तों के पास रहता हूं, चाहे भक्त कहीं भी हो, मैं उनका साथ कभी नहीं तजता। जहां मेरे भक्त का आदर नहीं होता, मैं वहां नहीं रहता। भगवान कहते हैं, जहां भक्त मेरे पैर धरत हैं, तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। फिर भी भक्त भगवान से क्या कह रहा है,

सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए भी अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का, जरूर और जरूर इस प्रोग्राम को सुनते ही रहना। सुंदर भजन जो अब की बार पेश किया जा रहा है प्रसून मुखर्जी की आवाज में।

सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में प्रसून मुखर्जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है।

पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले एक सुंदर भजन सोनू निगम की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सोनू निगम की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में आपकी बार ये खास सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, खासतौर पर मिका सुखो जी की आवाज।

इसी गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन के साथ भी भजन यात्रा का प्रोग्राम जो है आज का खत्म समाप्त होने पर आ गया है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा

Monika Jagnika ure Udit Narayan ki avans me ye jana bastro gambe peace ki gaye aap sabhi aur sabhi sunne walon ki seva mein चले आपकी बार सोनू निगम और सपना मुखर्जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है

इसके जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। लाइव के जरिए ये प्रोग्राम सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। कुमार सानू एंड अलका

में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और अनुराधा पोर्टवल की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार फिल्म का नाम हम तुम्हारे है सनम।

सनम उस प्रोग्राम में पेश की गई हम तुम्हारे है सनम फिल्म का नाम अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण के आवाज में ये गाना भी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 4 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। 9 बजकर प्रोग्राम में 7 मिनट व्यतीत हो चुका है, 7:09। हर सुबह की तरह सुबह भी पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। एक प्रोग्राम जिसमें सिर्फ पुरानी नगमे आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और ये प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने में सुनने वालों को सुनते हैं गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो चले आप सभी सुनने वालों को हम आपको ले चलते हैं गर्मा गर्म कॉफी चाय की ओर, जो आप सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है, और वो भी शुभ सुबह अनहेल खुरम और गुड मॉर्निंग के साथ। चलते हैं प्रोग्राम में पहला गाना की ओर, जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुन वालों की सेवा में। जमीर फिल्म का नाम, किशोर कुमार, एक बड़ी ही खूबसूरत गाना इस बादल छाया हुआ मौसम में आपके लिए बस पेश किया जा रहा है।

आवाज में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में शैलेंद्र सिंह के आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। शैलेंद्र सिंह के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना। जमाने को दिखाना है फिल्म का नाम।

शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई जमाने को दिखाना है फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। एक गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

पर श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आशा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रफी साहब की आवाज में गाना पेश की गई। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार एंड आशा भोसले, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। पुरानी नख़्मे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 030-2266-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है।

कुमारन आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL चले मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामों काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में हर एक कामों काज किया जा रहा है। सभी इन्फॉर्मेशन आप लीजिए टेलीफोन नंबर जो 24 पर दख आप सभी के लिए बराबर एक बार होता है 030-265-65-60 आशा भोसले प्रोग्राम में।

गेल ऑफ एशिया आशब हुसले की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। शहर उत्तराख हॉलैंडी से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। मुकेश एंड शमशाद बेगम प्रोग्राम में मैं भौरा तू है फूल।

मुकेश और शमशाद बेगम के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए, मैं भौरा तू है फूल। खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए हैं। मोहम्मद रफी एन आशा भोसले, पुरानी नख में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए।

0: स्वागत।
1: पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुमन कल्याणपुर एंड मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में सूरज फिल्म का गीत अब की बार पेश किया जा रहा है। 12 मिनट बाकी है प्रोग्राम में, 12 मिनट बाकी है सुबह 10 बजने में। आज बीवे बृहस्पतिवार का दिन 4 जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी।
2: इतना है तुमसे प्यार मुझे मैं

पद्मश्री मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के आवाज में ये गाना पेश की गई। सूरज फिल्म का गीत अभी आपने सुना, इतना है तुमसे प्यार। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड में और दूर दूर शहरों तक और खासतौर पर प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में और दूर दूर शहरों तक अपना मोटरकार में अपना घरों में हमारा प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं। एक गाना और होगा, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर। खबरें के बाद पुरानी फिल्में, संगीतों का प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जरूर आप सुनते ही रहना तकरीबन 11 बजे तक। चांद और सूरज फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर एक बार फिर से प्रोग्राम में।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मुकेश के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

एक काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे लता मंगेशकर की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आपकी फरमाइश से हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है, सस्ती दामों में हर काम किया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टेलीफोन नंबर है 0352 65 65 60, और ये तार की नंबर जो है टेलीफोन नंबर कंतूर का दफ्तर का जो है 24 घंटे पर एक बार होता है आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन इन्फो के लिए। अब वैसे हमेशा भी आप ईमेल कर सकते हैं रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए radio.sbs.nl के जरिए, और इसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मुकेश एन लता, हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम परस मनी।

मुकीस और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जले मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना मेरे गाड़ी उड़न घटोला गाना का बोल है मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है

उड़न खटोला मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। किशोर एनाशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम ये है। आशा भोसले एन किशोर कुमार।

गाना जो प्रोग्राम में पेश किए गए किशोर और आशा जी की आवाज में, ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश किए गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश और लता जी के आवास में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, काफी पुरानी फिल्म का गीत होगा जो मुकेश और लता जी के आवास में पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेस्ट पे एस की जरिए ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आपकी बार लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना पेश किया जा रहा है पुरानी फिल्म दुलारी से पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर और साथियों के आवास में ये गाना पेश की गई पुरानी फिल्म दुलारी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की इस पुरानी नगमे की खास प्रोग्राम में। किशोर एनाशा।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। काफी प्यार भरी गाना अभी आपने सुना प्रोग्राम में जो पेश की गई है। द माइटी मुकेश, द माइटी मुकेश की आवाज में आज की प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: तो हो जिसका सपना
0: द माइटी मुकेश, द माइटी मुकेश की आवाज में आज की प्रोग्राम में

दम आई टी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गए रेडियो SBS के जरिए जो अभी आपने सुना। चले महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना धीरे धीरे बोल।

दिलीप कुमार और खास तौर पर विजयंती बाला का खास फिल्म राम और श्याम, उसी फिल्म का गीत पेश की गए महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में। ये खास गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। मोहम्मद रफी और आशा प्रोग्राम में अबकी बार होगा और आपको हम ले चलते हैं ये गाना की ओर।

इश्क गए मेरा इंतजार करना। अरमान मलिक की आवाज में द फिल्म खुदा हाफिज, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार ये गाना की ओर। गाना कबूल है शुक्रिया, सड़क नंबर 2 फिल्म का नाम।

नमस्कार, प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। चले प्रोग्राम में अपनी बार ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना।

सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और जिस तरह से भी आप चाहे हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और वो भी इंटरनेट के सहारे। और इसी तरह से भी बहुत सी सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं।

बरसानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मेरे मेहरबान फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में। उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल प्रोग्राम में।

में ये गाना पेश किए गए इंसान फिल्म का नाम रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना ये खास गाना। एक बार फिर से उदित नारायण होगा प्रोग्राम में, साथ में होगा अलका और फिल्म का नाम इश्क है तुमसे।

luisteren. Wel een feestje hebben we film gedaan. Ishq Hai Tumse. Ishq Hai Tumse film gedaan. Gana jo program bhi pesh ki gayi. खूबसूरत नगमे आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म नाराज़।

फिल्म का नाम। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-6060। इसी तार की नंबर पर अपना हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं फरमाइशी के बारे में, आपकी तमाम खबरें, तमाम रिक्लाम के बारे में।

सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। अरिजीत सिंह एंड सुनिधि।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में श्रेया घोषाल और जावेद अली प्रोग्राम में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रय उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए फिल्म शोबिस की ओर है। शान और अब की बार श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

शुरिया की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। द फिल्म शोबिस, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सभी कामकाज के लिए। रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 032-65-65-60। अनुराधा पोटवाल और कुमार सानू प्रोग्राम में, फिल्म का नाम शुक्रिया।

राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना आज के प्रोग्राम में अलका जी की आवाज में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है सोल्जर।

0: ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुने लाइव के जरिए ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में
1: तुझसे अब मुझे मरना है
0: राहत जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

और श्रिया जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में आपकी बार गाना जो पेश होगा अभिजीत और अलका जी की आवाज में, अभिजीत और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा

गायक निक और अभिजीत की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गीत जो आपकी बार पेश होगा अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में।

पृथ्वी चौहान और अरिजीत सिंह की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं।

से ये गाना भी आपने सुना। सुनवलो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। शान और श्रेया घोषाल प्रोग्राम में

रेडियो SBS के जरिए खूबसूरत गाना शाना और श्रेया घोषाल की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। अब की बार प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की सेवा में KK की आवाज में

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो बीठे ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में ये गाना लता जी की आवाज में आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है पकीसा।

परसमनी का गीत पेश की गई मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में। अभी आपने सुना वो जब याद आए, रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं तलत जी की आवाज में आज की प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हम आपको ले चलेंगे अगली बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में। मनोज कुमार का फिल्म पहचान, उसी फिल्म का ये गाना। 1970 का फिल्म है, 1973 का फिल्म। मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाए गए पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा के बाद चले प्रोग्राम में लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

एवांस में फिखलता आसमान फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर एन लता जी के आवाज में फिल्म प्रेम बंधन का गीत पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया। इसको सुनो तो श्रेया घोषाल एंड फरहान सईद। दिल लीजिए क्वाम आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। गाँव द फेदर में कितनी बातें याद आती है आउट द फिल्म लक्ष्य।

मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम, बस अयोध्या फिल्म हमको दीवाना कर गए। अयोध्या फिल्म फना कोमदा खसंग दौर कैलाश खेर एशान चांद सिफारिश जो करता हमारी।

तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी।

अभी अभी आपने सुना के की आवाज में फिल्म जिस्म दो से, और अब आप सुनिए फिल्म शोर इन द सिटी से श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज में साइबो।

गुलाबी स्काई फिल्म द स्काई इज पिंक से आपने सुना। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए दिलविल प्यार व्यार से। हरी हरन और अलका याचनिक की आवाज में आप सुनिए तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।

गुरु नालो इश्क मिठा इस द फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एन गजोंग दोर लता मंगेशकर कॉम्ट आउट द फिल्म आरजू। अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।

सैलरू सैलरे क्या बोला फिर बोला रे. इस फिल्म का शाहरुख खान है, ऐश्वर्या राय साहब में चंद्रचूर सिंह. द फिल्म घाट कम दाह सोहदोर उदित नारायण अलका याचनिक सोनू निगम एंड जसपिंदर नरूला. झुमका चांदी दा चांदी दा झुमका चांदी दा.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ है इस आई द फिल्म फना एंड आई द फिल्म रूही आफ्ता इस फॉर्म होती है फिर आर आदि एसबीएस किस्तों।

तुझ में क्या है दीवाने, खसौंद और किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर कुम आउट द फिल्म बड़े दिल वाले, हाउ द फेदर मेट आउट द फिल्म मलंग, हमरा इज इट लीचे।

हम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ये बेहतरीन गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ पे फिल्म अनपढ़ से, और अब आप सुनिए फिल्म देवदास से उदित नारायण की आवाज़ में वो चांद जैसी लड़की।

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का। कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।